उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपटे ना कभी चांद तक।

0: बहुत बहुत खूब।
1: आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी मैया तो प्यार दूं, इसलिए तू

0: आजा पिया तोहे प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो प्यार दूं।
1: वाह वाह वाह राधना जी, आज मदर डेरी है तुहानू पता है
0: जी।
1: दुनिया दिया सोहनिया मावां जां अपनी मां बारे कुछ कहना चाहोगे?
0: जी बिल्कुल, एक बहुत पुरानी फिल्म ओदा नाम सी मंजली दीदी।
1: मंजली दीदी, हां जी
0: हां जी। मंजली दा मतलब की विचकारली।
1: अच्छा,
0: यूपी च मंजली या मंजला परा विचकारले नूं कहंदे।
1: मेहरबानी, मेरे वास्ते नवा लफ्ज आए, थैंक यू।
0: मंजली मंजली दीदी।
1: अच्छा, मंजली दीदी, ठीक
0: है। उच्च सचिन छोटा जिहा सीगा ते उहदे उत्ते गाना फिल्माया सीगा जो मैं हुण आप जी नूं सुणाउण लगी मावां उत्ते।
1: अच्छा, सुणाओ जी।
0: ते ए गीत वैसे तो सारे मावां ले इको गीत गांदे ने, बड़ा हिट है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी
1: होई है, ये ते काफी
0: ए भी गीत आ, ए भी बड़ा हिट होया सी।
1: अच्छा।
0: ते जेड़ा मैं आप जी नूं सुणाउण लगी ओ किते किते आकाशवाणी ते बजदा सी।
1: अच्छा,
0: और चूंकि मेरा शौक रहा ते मैनू तो फिर बचपन दे सारे गीत
1: याद ने जी। मैं बिल्कुल
0: जी, ए भी बड़ा गॉड गिफ्ट है जी, इन्ने गीत याद रखने। मैं कल भी 200-250 गीत मैं मुंह जवानी बचपन की याद ने हुण तक।
1: टेस्ट है, हॉबी है तुहाडी
0: जी। हां जी बिल्कुल। ते दूसरी गल है कि मेरी मां दी देन है, ते मेरी मां ने कहा गुड्डी तेन ए गीत याद है, तू ए गीत सुना।
1: अच्छा, तुहाडा ना तुहाडा गुड्डी हुंदा सी?
0: हां जी, हुंदा नहीं सी, हुण वी आ।
1: अच्छा, हुण वी तुहानू गुड्डी मिलदे?
0: तुसी मैनू गुड्डी बुला सकदे हो?
1: आजा
0: हुण।
1: चलो जी, मैं अगली बार तो गुड्डी तुहानू गुड्डी दे नां नाल मुखातिब करांगा। बहुत सोहना नां है गुड्डी, ते आम पिंडां विच हुंदा कुड़ियां दे नां
0: जी। ते मेरी नानी जी ते मेरे फादर मेनू गुड्डो कहंदे सी, चार नाल
1: गुड्डो। हां जी हां जी
0: हां जी। ते ओ गीत मैं आप जी ने बोला ना,
1: नानी नानी ते नाना तुहानू प्यार नाल गुड्डो कहंदे सी।
0: हां जी।
1: ते जदों गुस्से च हुंदे सी उदों की कहंदे हुंदे सी?
0: उदों कहंदे सी नी गुड्डो सुनन दई आ, उरे आई, तैनू सुनंदा नी। एक बारी मैं नानी ने आवाज मारी, मेरे नाना जी हुक्का पींदे सी।
1: अच्छा,
0: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1: ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ?
0: ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੁੜਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੁੜ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
1: ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ। मैं नानी ने मेनू आवाज मारी गुड्डो, अगो मैं कह बैठी हां।
1: अच्छा,
0: कहंदी उरिया। मैं फ्रॉक पाई हुई, इचक दाना कपड़ा हुंदा सी पीले गुलाबी रंग दी, मैं फ्रॉक पाई हुई आ गई, मेरी दो गुत्ता रिबन बन्ने हुए मेरी मम्मी ने।
1: अच्छा,
0: ते कहंदी हुणे तू की कहा?
1: हां,
0: मैं चुप।
1: हां,
0: एक खिच के मेरे वट के चपेड़ मारी।
1: अच्छा अच्छा,
0: ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨੀ ਭੁੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ, ਮੈਂ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾਨੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हास्से खिलारदा।

0: घोड़ा चतुर
1: एक तो पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी के पग

शान तो लगा चीना प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है। यमला पगला दीवाना हो रब।

मिठे बोलां नाल लै आप दे दिलां ते राज करन वाला कण वधाउण वाला पाख दे मसले लियाउण वाला पंजाब दी सैर करवाउण वाला हक सच दे ढोल वजाउण वाला कईयां मथियां ते तिउड़ियां लबां ते हासे लियाउण वाला तुहाडी सोच च भड़थू पाउण वाला ते खरियां खरियां सुनाउण वाला।

उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद।

0: आग जलते हैं। जो अश्क पी भी लिए, जो होंठ सी भी लिए, जो तुम्हारी राह चले, कुछ अपनी सुनाओ कुछ आज मेरी सुनो, कुछ आज अपनी सुनाओ कुछ आज मेरी सुनो, खामोशियों से, खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं।
1: वाह वाह, खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं।
0: वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। ये फिल्म नूर जहारा फिल्म द
1: जहारा,
0: हाँ जी,
1: अच्छा।
0: और मदन मोहन जी का म्यूजिक है जिन्होंने मैं सब तो पहले गीत सुनाया था आपकी नजरों ने।
1: वंडरफुल जी, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री क्या बातें ने, पर जड़ियां मेनू खास करके जेडे 90 दे 70 दे जे इथे जे दे गाने ना 30 साल दे विच विच जेडे हन कमाल दे गाने। ए नहीं कि आज भी चलो कोई कोई गाना वधिया मेनू लगदा, लेकिन पिछले सारे ही सोहने लगदे ने गाने।
0: पिछले सर तुसी गीत अगर तुहानू नींद नहीं आ रही ना, पुराने गीत तुसी लगा के सो जा तो तुहानू इवें लगेगा जिवें ओह तुहाडे लई लिखे गए ने।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: जज्बात ने।
1: हाँ जी हाँ जी, नो डाउट।
0: कोई भी गीत तुसी सुनोगे हर व्यक्ति नु ए लगदा ए मेरे लिए लिखा गया, ए मेरे जज्बात ने।
1: जी जी आराधना जी, बहुत बहुत मेहरबानी, तुसी इन्निया सोहनिया रौनकां लाईआं, गाने सुनाए
0: हैं,
1: ते मैं तुहाडे नाल इक शेयर करांगा।
0: जी अर्ज, सॉरी,
1: ए नज़्म किसे शायर दी है, अल्फाज मेरे ही मेरे ने।
0: क्या बात है,
1: तुसी कहन रहे हो ना कि जेड़े तुसी सुनोगे तो एवं लगेगा कि तरह मेरे वास्ते गीत लिखा गया है।
0: जी हाँ जी,
1: ये नज़्म किसे शायर दी है, अल्फाज मेरे ही मेरे ने, दुहाई मेरी ही मेरी है, जख्म तेरे ही तेरे ने।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है, जिंदे रहो।
1: दुहाई मेरी ही मेरी है, जख्म तेरे ही तेरे ने, ए हट हुसन दी तेरी है, मेरे फेरे ही फेरे ने।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है सर।
1: ए हट हुसन दी तेरी है, मेरे फेरे ही फेरे ने, बेरुखी दी बारिश सजना बंद कर दे, इस जग विच दुख बथेरे ने, बेरुखी दी बारिश बंद कर दे, ऑलरेडी दुख बड़े ने, उतो तुही भी दुख देन दे हो।
0: नहीं मैं तो आप जी ये कहांगी कि हुण आप जी रेडियो तो खाली जदो हुण ते एक सोहना जिहा पैग बना लियो।
1: नहीं ये तू अर्ली है जी, अर्ली है, सौन लगा पे।
0: अच्छा,
1: मैडम जी 5 बजे ने साडे जर्मन दे विच।
0: अच्छा जी, अच्छा,
1: धुप लगी है बाहर। धुप लगी है,
0: ओके ओके।
1: अजे मैं अपने गार्डन च काम करना, बूटे लाने ने बहुत सोहने फुला।
0: अच्छा जी
1: हाँ जी हाँ जी,
0: गुड गुड, वेरी गुड।
1: ते मेरिया शुभ इच्छावां तुहाडे नाल, तंदुरुस्त रहो, जीवदे वसदे रहो।
0: थैंक यू सो मच सर, और सारे प्रवाद रेडियो के श्रोतावां नूं शाम दी सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
1: थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।
0: और बस आपा प्रवाद रेडियो नाल इसे तरह प्यार साडी मोहब्बत भरी
1: रहे। बहुत बहुत मेहरबानी,
0: बाजवा साहब नूं बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल
1: जी। साडे वल्लों तुहानूं प्यार भरी सत श्री अकाल, साडा भी प्यार उन्ना ही बरकरार, बल्कि दहां नाल जर्ब दे के। ठीक है जी
0: जी जी, ओके, थैंक यू,
1: हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय बाय। सो ए सन जी दिल्ली तो आराधना जी हुणी, जेड़े खूबसूरत गाने सुना के गए ने। ते दोस्तो इथे ही साडा अज दा प्रोग्राम जेड़ा ओ खत्म हुंदा, ते अगले हफ्ते सचडे संडे फिर तुहाडी सेवा विच हाजिर होवांगे। मेरी तरफों देशां विदेशां दे विच प्रवाद रेडियो सुन रहे सारे सज्जणां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट।
2: हेलो हेलो, दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज, मैं हां तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ, ਨਿਊਜਰਸੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਕ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ

आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: इतनी गहराइयां तक जान वाले नहीं, लंबा लंबा जड़े है गए, और
0: जी
1: तरीके हर एक दे मुखलब ने,
0: जी बिल्कुल।
1: त्रास हर इकट्ठे
0: दुनिया
1: होके दिल
0: रंग
1: दी मिट्टी
0: बिरंगी
1: दे
0: महमूद
1: छड़े आ।
0: साहब, रंग बिरंगी दुनिया,
1: अखीर तो उत्थे ही है ना।
0: अखीर उत्थे है सारे दी। वेख लो अज जिन्हां दियां तख्तियां लगियां ने महमूद साहब, कदी ये
1: जी
0: तुरदे हुंदे हन गली दे विच ते कहिंदे हुणे साडे वर्गा है ही कोई नहीं, साडा जिन्ना
1: है
0: ठोकिया
1: कोई
0: ओए उस रात
1: नहीं।
0: जम्मिया ही कोई नहीं जिहड़ी रात मैं जम्मिया सी। है
1: ऐदां दे बंदे वेखे आ जेड़े हाथ नाल सलाम नहीं सी लैंदे, पैरां नाल सलाम लैंदे,
0: बल्ले
1: अज
0: बल्ले
1: उहनां दियां
0: बल्ले
1: कबरां ते कुत्ते भौंकदे
0: कुत्ते
1: फिरदे आ।
0: भौंकते फिरते ने। वाकया ही वाकया ही वाकया ही। वैसे बिल्कुल जिन
1: ते
0: जिन
1: ओ
0: जेड़े
1: जेड़ियां
0: हाँ
1: ओ जेड़े लोग ने, जेड़ियां ओ हस्तियां ने जिन्हां ने दुनिया दे विच आजी और नीवे होके जिंदगी गुजारी, अज उन्हां दे मजारां दे उत्ते, उन्हां
0: अज भी
1: दियां
0: झंडे झोलदे
1: गांवां
0: ने।
1: दे उत्ते कितना रश,
0: हाँ
1: अज भी झंडे
0: अज भी
1: झोलदे ने।
0: लोकी डांस करते बेहोश हो जाते ने, नचते ने उन्हां दी
1: बिल्कुल
0: नां दे
1: बिल्कुल
0: अगे,
1: इसे
0: उन्हां दियां मजारां दे उत्ते अज भी मेले लगते ने उसे तरह।
1: बिल्कुल इसे तरह ही
0: बिल्कुल बिल्कुल। वैखे सच्चे सुच्चे बंदियां दा नां सदा ही रहिंदा जी।
1: सरदार जी गल ये हैगी है, जिन्हां ने आपदी जेब ते कुत्ता बनया, उन्हां ने फिर कुत्ता जदों बनया तो फिर भौंकना ही है, उन्हां ने बोलना तो नहीं ना। सीधी पदरी गल तो यह है ना।
0: वेखो जे कुत्ते भौंकना तो सानू शरीफ आदमियों का पता किदां लगे भी वेखो ये किन्ने
1: हाँ बिल्कुल जी, ये चीज हैगी है,
0: शरीफ एदा तो ही तो सानू पता लगता कि वो वेखो ओ
1: इन्हां तो ही तो
0: किन्ने
1: पता
0: शरीफ,
1: लगता, बिल्कुल
0: ओ
1: इसे
0: किन्ने
1: तरह ही।
0: शरीफ ने, ते इन्हां ने वेख लो आ ये कुत्तियां नू
1: हाँ
0: भी
1: जी
0: मात
1: हाँ
0: पाउण डए ने ये लोग।
1: बिल्कुल इसे तरह।
0: वेखो ना अख्तर साहब इस दुनिया के विच किड्डे किड्डे नेक लोग ने ते किड्डियां
1: बिल्कुल
0: किड्डियां बद जातां ने।
1: बात जाता है, बिल्कुल
0: हाँ
1: इसे तरह
0: वेखो बस
1: सोच ही
0: ए
1: नहीं सकता।
0: हाँ एदा नाम ही तो दुनिया जी। हाँ जी ते तुसी जांदे
1: जे
0: जांदे
1: कोई जालम
0: कोई
1: देख लिए,
0: हाँ
1: जे
0: जी
1: कोई जालम देख लिए ते
0: हाँ जी
1: तरस दा लभदी नहीं लभदा विचों,
0: वाकया ही बस नहीं लभदा नहीं लभदा।
1: ते जे कोई शरीफ देख लिए तो मोहब्बत जेड़ी हैगी है सोचने यार इस तो ज्यादा भी हैगी किले।
0: वैसे वाकया ही दुनिया गांव तो गांव है, चंगिया कम्मां च भी ते मंदिया कम्मां दे विच
1: हाँ जी अखीर
0: वाह
1: ही हुंदी जांदी,
0: अखीर है अखीर मतलब के वाकई। वैसे ते
1: बस
0: जांदे जांदे
1: यही
0: तुसी
1: गल।
0: कोई होर शेर सुनाना चाहो, कोई अपने इलाके दी गल सांझी करनी चाहो, क्योंकि अजे कोई कॉल
1: हाँ
0: नहीं आई ते जरूरी नहीं अगर तुसी चाहो कोई
1: मैं सर
0: होर
1: उदे चेक जेड़ा हैगा ना एक छोटी जी होर सुनाउंदा
0: आ
1: वा।
0: जाओ आ जाओ। सुनाओ फिर सुनाओ।
1: अज मौजू जेड़ा हैगा मौजू इदां दा छिड़ गया वा, भुख
0: हाँ
1: ने मेरी गैरत वेची,
0: जी
1: भुख ने मेरी गैरत वेची, मेथों जुर्म कराए,
0: मेथों जुर्म कराए। वाह
1: सिर दी चुन्नी लक नाल बज्जी, पैरी घुंगरू पाए, भुख ने मेरी गैरत वेची, मेथों जुर्म कराए,
0: हाँ जी
1: शहर मेरे दे शुरफा सारे बन कतारा आंदे, भुख पलीत ने खोले रिश्ते अपने गैर बनाए,
0: वाह वाह वाह वाह। अपने गैर बनाए।
1: लोक लका के एक दूजे तों अगड़ पिछड़ आंदे, थां थां मेरे जुस्से उत्ते कुत्तियां मुंह ने लाए,
0: वाह
1: दस दे रब्बा किथे जावां किन्नू दर्द सुणावां,
0: हाँ जी
1: दस दे रब्बा किथे जावां किन्नू दर्द सुणावां, पहलो नोचिया रज के गिर जा, बाद च कुत्ते आए,
0: वाह वाह बहुत कुत्ते आए।
1: पाक पवित्र जुस्सा मेरा, पाक
0: वाह
1: सी मेरियां सोचा, पाक
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: पवित्र जुस्सा मेरा, पाक सी मेरियां सोचा, वेख सकी ना भुखे अख्तर ढेड अपने दे जाए,
0: वाह भुख
1: भुख ने मेरी गैरत वेची, मेथों जुर्म कराए।
0: ने मेरी गैरत विच वाकई।
1: बस जी भुख जेड़ी हैगी आ, ये बच्चे जेड़े इन्हां नूं आपां अंदरां कह सकते हैं, इन्हां वास्ते बहुत कुछ करना पैंदा, और जमाना इन्ना जालम आ कि वो तरस नहीं खांदा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। ते अख्तर साहब मैं तुहाडे नाल दो छोटे छोटे शेर करांगा कि
1: बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह।
0: दाल दुनिया दे मालका दस ते सही,
1: वाह
0: दर
1: वाह
0: दर नचाउना क्यों बुलिया नू,
1: हाय हाय हाय
0: ते

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत स्रोतियो ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजनों दिलां ते दस्तक देन वाला तुहाडे दिलां दी धड़कन वधाउण वाला भाखदे मसले लियाउण वाला पंजाब दी सैर करवाउण वाला हक सच दे ढोल वजाउण वाला कईयां मथियां ते त्यूड़ियां लबां ते हासे लियाउण वाला तुहाडी सोच च भड़थू पाउण वाला ते खरियां खरियां सुनाउण वाला पंजाब अते पंजाबियत दा पहरेदा मिठे बोलां नाल लैस आप दे दिलां ते राज करन वाला ए है जी परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट। जी हां, परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन इंडियन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स परवाज रेडियो बिल्कुल योर ओन रेडियो स्टेशन। एक्सपोज योर सेल्फ, हाउ डू यू सी दिस वंडरफुल लवली फनी और स्वीट वर्ल्ड विद योर ओन वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस। We are only phone call away. बिल्कुल दोस्तों, असी फोन कॉल अवे या तुहाडे तो ते गल इस तरह भाई अज असी कॉला नहीं लेंदे सैटरडे, कल है संडे, कल है जी शायरो शायरी दा प्रोग्राम, ओदे विच तुहाडा ही प्रोग्राम है, तुहाडियां ही कॉला लईयां जाणगियां। अज पहले आवर विच दोस्तो मैं इनकलाबी कवि संत राम उदासी जी हुणा ते गलबात करांगा, ओदियां दुश्वारियां ते ओदे ते जो जुल्म कीता गौरमेंट ने सारा कुछ जानदिआं होया वी ओनूं लावारस करार दे के स्टेशन दे उत्ते ही अग ला दित्ती गई। ओना भी जड़ा जात पात छुआ छात है साडे समाज विच कोड है, असल च जिन्ना ने ए शुरू ही कीता कोड ओ ने साडे समाज दे विच, ए लोग ते बेचारे कामे ने वर्कर ने। ते अगले आवर दे विच दोस्तो साडे मशहूर ते निरपक्ष पत्रकार बलवीर बब्बी जी हुणी आउणगे, पंजाब पंजाबियत दे बारे गलबात करनगे हमेशा दी तरह। वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर लवली रेडियो स्टेशन। टू लिसन अस वर्ल्ड वाइड लॉग ऑन www.pravazradio.com। बिल्कुल जी,
www.pravasradio.com दोस्तो तुसी अपने प्ले स्टोर ते जाना ऐप डाउनलोड करो साडा लोगो येलो रंग दा दो स्पीकर ने ओदे उत्ते वजना शुरू हो जाएगा ते जेड़े सज्जन मित्र सानू सुनदे ने ओ अपने पंजा सत्तां दोस्तां नू साडी ऐप डाउनलोड करवाउण वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल ते मैं हां जी आपदा होस्ट ते दोस्त सुच्चा सिंह बाजवा स्वीकार करो जी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लेनेट दाल दुनिया दे मालका दस ता सही दर दर नचाउना क्यों बुलिया नू दाल दुनिया दे मालका दस ते सही दर दर नचाउना क्यों बुलिया नू टोए अमीरां दे नोटा नाल भर देना भुल गया क्यों ठंडिया चुल्हिया नू पर टोए अमीरां दे नोटा नाल भर देना भुल गया क्यों ठंडिया चुल्हिया नू बाद जातां नू दरवेश बना देना ते चिकनी सुटदा मोती उमलिया नू गदार माण दे इज्जतां ते पातशाहियां सजाए मौत क्यों हुंदी है दुल्हिया नू सजाए मौत क्यों हुंदी है दुल्हिया नू वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों तुसी सुन रहे हो जी प्रवाद रेडियो फ्रैंकफर्ट अज सैटरडे है 25 अप्रैल ते टेम्परेचर भी ठीक ठाक है जी अज 17 का ते टाइम साडी सोहनी जी स्टूडियो दी घड़ी ते इस वक्त दोस्तों जर्मन दे 3:19 हो गए ने ते साडा स्टूडियो दा टेलीफोन है जी 0049 171 भर देना भुल गया क्यों ठंडिया चुल्हिया नू बाद जातां नू दरवेश बना देना ते चिकनी सुटदा मोती उमलिया नू गदार माण दे इज्जतां ते पातशाहियां सजाए मौत क्यों हुंदी है दुल्हिया नू सजाए मौत क्यों हुंदी है दुल्हिया नू वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों तुसी सुन रहे हो जी प्रवाद रेडियो फ्रैंकफर्ट अज सैटरडे है 25 अप्रैल ते टेम्परेचर भी ठीक ठाक है जी अज 17 का ते टाइम साडी सोहनी जी स्टूडियो दी घड़ी ते इस वक्त दोस्तों जर्मन दे 3:19 हो गए ने ते साडा स्टूडियो दा टेलीफोन है जी 0049 171 4869 5